कोई रचना बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उस मौज का कोई इशारा होवे, कोई मिसाल होवे दुनिया ते, तां उहदी मिसाल दे के समझाया जा सकदा। कबीर जी नूं पुछया सी भाई तुसी स्वर्ग भी निंद दिते, नरक भी निंद दिते, ते चरणा दी मौज नूं तुसी बड़ा बयान करदे हो, ओ मौज है कैसी भला दसो तां सही। कबीर जी कहन लगे कोई इस धरती ते मिसाल नहीं है जिदी मिसाल दे के मैं तुहानू समझा सकां भई चरणा दी मौज कैसी है। चरण कमल की मौज को कहूं कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। जे मैं कोई मिसाल दे के चरणा दी मौज नूं बयान कर भी देवां, वो सुभाए मान नहीं होवेगा, क्योंकि चरणा दी मौज नूं कौन दसेगा। कह कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए, गुंगे नूं मिठाई खवा दिओ तां वो की दसेगा, कच्छा ही मारेगा नचेगा पर मुंह बयान नहीं कर सकेगा। जेड़े गुरु के लाल अमृत वेले जाग के इशनान करके गुरु दे चरणा विच जुड़ के आनंद माणदे हन, गुरु के शब्द रूपी चरणा नूं हिरदे विच वसाउंदे हन, ए मौज उन्हां नूं पता है भाई। जे तुम्हें उस मौज नूं मानना चाहुना है, उसका आनंद वेखना चाहुना है, तो फिर मेहनत करनी पवेगी भाई, जुड़ना पवेगा गुरु दे चरणा विच। कहबे को शोभा ने, जे मैं कुछ मिसाल दे के समझाउंदा हां तां ओ गल सुभायमान ही नहीं होंदी। आ प्यार वालियां नूं जिन्हां नूं चरणा दी मौज चंगी लग गई, ओ कहंदे ने इच्छा नहीं स्वर्ग दी ना इच्छा राज भाग दी, प्रीति तेरे चरणा दी मंगा महाराज दी। जे तुठा है तां तेरे चरणा दी प्रीत मेरे हिरदे विच वस जावे। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले दीवान सजिया होया, नाम दे विहाजन लई दूरों दूरों रूहां आके जुड़ियां होईयां सन, ते महापुरख कहण लगे गुरमुखो जप तप बरत कीने पेखन को चरना राम। जितने मनुख जप तप सिमरन भजन पुन दान करदे कादे लई, कि मैनू चरणा दी प्रीति बख्शिश होवे, चरणा दा प्यार मेरे। ते महापुरख बाबा आनंद सिंह जी कहण लगे जे चरण प्राप्त हो गए, जे चरण मिल गए तो फिर की मंगोगे। ते सारी संगत हैरान हो गई भई चरणा दी प्राप्ति हो गई, फिर हुण मंगण दी की लोड़ है, होर की बाकी रह गया जेड़ा मंगण वाला है। पर बाबा जी दे सामने किसे दी जुरत नहीं सी होंदी कोई बोल जावे, क्योंकि महापुरख दी उडारी ते साडे कलयुगी जीवां दी उडारी विच बड़ा फर्क है। जिथों दी गल उन्हां करनी है असी सोच नहीं सकदे, असी किसे अखरां दा अर्थ तां कर लवांगे पर उस दा भाव और जो अनुभव नाम जपन वालियां दा हुंदा है ओ किसे होर दा नहीं होंदा। कहन लगे चरणा दी प्राप्ति हो गई ते फिर की मंगोगे, तां फिर आप ही प्यार विच आके रब दे रंग विच रते होए। कहन लगे गुरमुखो जदों चरणा दा प्यार मिल रहा होवे, चरणा दी प्राप्ति हो जावे, तां चरणा विचों चरणा दी प्रीति मंग लैण, क्योंकि कोई वस्तु मिल जावे ते फिर उदे नाल प्यार ना बने। कोई वस्तु सानू प्राप्त हो जावे, निरंकार दे दर्शन हो जान, ते प्यार ही नहीं बनया, स्नेह ही नहीं होया, तां फिर ओ रस ओ स्वाद उस बख्शिश तो खाली रह जाईदा। ते महापुरख कहण लगे चरणा विचों चरणा दी प्रीति मंग लिओ। इसलिए जिन्हां नूं स्वाद आ गया है
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ, ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਪੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਰਾਏ ਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੋ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਬਾਗ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ।

हर के नाम बिना झूठे सगल पुसारे। हरी दे नाम तो बिना सब कुछ झूठ दा पसारा है, झूठ दा आडंबर है। हे मनुख तू जिन्ना मर्जी करी जा, कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हुण सतगुरु जी ख्याल देंदे ने, क्योंकि ये शब्द भगत रविदास जी ने आरती दा कह के गायन किया है। धन गुरु नानक पातशाह जिवें उस ब्राह्मण एक पंडित नूं उपदेश देंदे ने, कहिंदे ने इसे तरह ही जगन्नाथपुरी जिस वेले धन गुरु नानक पातशाह पहुंचे ते की वेखते ने, जगन्नाथपुरी दा मंदिर है, अंदर जगन्नाथ दी मूर्त है। हुण उस मूर्त दे अगे एक थाल है, उस थाल विच थोड़े जे फुल हन, धूप अगरबत्ती बल रही है, एक दीवा जिहदे विच घिओ ते बत्ती बाल के दीवा जगाया होया है। उस थाल नूं तैयार करके जगन्नाथ दी मूर्ति दे सामने कुड़ ओदी उस्तत दे मुख दे विचो शब्द कहे जा रहे ने, गीत गाए जा रहे ने, ते थाल नूं घुमाया जा रहा है। सतगुरु कहिंदे ने भाई ए की कर रहे हो? कहिंदे ने जी असीं जगन्नाथ दी आरती उतार रहे हैं। सतसंग ध्यान देना, असीं आरती उतार रहे हैं। हुण धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने भाई जगत दे नाथ ना बहुत वड्डा है, जगत दा नाथ, जो जगत दा नाथ है कि तुसी ओदी आरती इस थाल विच उतार रहे हो? कहन लगे हां। सतगुरु गुरु नानक पातशाह बाहर आ गए। हुण बाहर आके गुरु नानक पातशाह ने भी आरती उतार ली। त्रासवी महला पहला राग तनासरी विच धन गुरु नानक पातशाह ने जिहड़े वचन कहे ने, आओ मैं तुहाडे समक्ष रखा। एक सानू ए भी पता लगदा है आरती है की, क्योंकि अज मैं देख रहा हर गुरुद्वारे आरती की एक मर्यादा बन गई है। आरती जरूर होनी चाहिए है, हां भाई जरूर करो, पर आरती किवें करनी है? तुश बुद्धि अनुसार मैं थोड़ी जी विचार तुहाडे समक्ष रखना चाहना, क्योंकि सानू उस गुरमत का पता लग जाए। आरती करना गुनाह नहीं है, पर जिवें गुरु नानक पातशाह ने आरती की है उवें करनी है।

नाम तेरो आसनो। हे मेरे ठाकुर बैठल वाहिगुरु, जिहड़ा पंडित ने आसन लाया है ना, मैं तेरे नाम का ही आसन बनाया है। नाम तेरो आसनो, मैं उस नाम नु आसन समझना। नाम तेरो उरसा, उरसा कहते ने बड्डी नु जिहदे नाल केस रगड़िया जाता है। नाम तेरो उरसा, फिर कहते ने नाम तेरो केसरो लै छिड़कारे, कहते ने वो केसर रगड़ के तेरे उत्ते छिड़का करते ने ना, मैं तेरे उत्ते नाम का ही केसर छिड़क देता है। मैं सब कुछ नाम नहीं समझे। अगे भगत जी कमाल की गल कहते।

गुरु की करे जे सिखा में भरोसा ना हो, गुरु की करे जे सिखा दे मन में ही प्यार ना हो। पिछौर आनंदपुर साहब संगत आई, सारी संगत ने मत्था टेके।

सैव जी कहने लगे कि दे जोगा आपको सतनाम श्री वाहे कि दे जोगा है जो? कोई मां प्यो जोगा होता है, कोई अपने आप जोगा, कोई दुनिया जोगा, कोई देश कौम जोगा, तू कि दे जोगा है? जेड़े प्यार नाल गुरु साहब ने पूछया बच्चे दे कर्म देखो।

डर के रहना चाहिए। जेड़ा वो भय विच रहता है सुखी रहता है, ते जेड़ा वो नाल दावे करे, जेड़ा वो नाल गिनतियां गिने, वो फिर सुखी नहीं रहता। गुरु ने इम्तिहान पाया, जोगा सिंह घर पहुंच गया, और सिर्फ भी चिट्ठी लैके पिछे पिछे पिशौर जा पहुंचे। जोगा सिंह की बरात तुरी, सिख भी नाल लड़की वालियां दे घर पहुंचे, मिलनी हो गई, सारिया रस्मां हो गई, हुण आनंद कारज का वेला होए। जोगा सिंह लावां लै रहे है, ते उस सिख ने वो चिट्ठी जोगा सिंह दे हाथ फड़ाई। जोगा सिंह लै भाई, कलगियां वाले पिता दा ए सुनेहा तेरे वास्ते। प्यार बहुत सी जोगा सिंह दे मन विच, बहुत श्रद्धा सी कलगियां वाले पिता वास्ते। गुरु दी चिट्ठी देखी, मथे ना लाई, चिट्ठी चुमी, चिट्ठी पढ़ी, ओ जोगा सिंह तेरी बड़ी लोड़ है, बैठे ते उठ पो।

चौकीदार खड़ा देखे यार, थोड़ी जी संगा आई फिर जोगा सिंह आके चला गया। चक्कर काट के आना, पहरेदार हट जाएगा, फिर वेसवा दे चुबारे चढ़ांगा, पर सात संगत कौन है चौकीदार, कलगियां वाला साधु जिड़ा आया ही रखिया करने वास्ते है।

गुरु साहब किथे जद सिखा ने कहा सुते हुए ने आराम कर रहे हैरान हो गया जोगा सिंह ए वेला कोई सौण दा नहीं क्यों सुते हैं सिखा ने कहा किसे मूर्ख सिख ने सतगुरां नूं सारी रात जगाई रखे ते जोगा सिंह गुरु साहब दे कमरे जा पहुंचे मत्था टेकिया सतगुरु उठ के बह गए अखां लाल हन क्योंकि सारी रात जागते रहे पर चेहरे ते उहो ही प्यार है जिहड़ा सिखां वास्ते अपने प्यारियां वास्ते हमेशा

कि सारी रात मैं पहरेदार बन के खड़ा रहे दुख है ते केवल इस गल का तू मेनू बेसवा दे चुबारे थले खड़ा करवाया वो जोगा सिया होवे मेरा सिख होवे गुरु नानक का सिख ते जावे वो बेसवा दे द्वारे वो जोगा सिया ऐसे सिखा दी ते मैं कदी भी

अगर गुरु ने सानू कुछ दिता है उसनु संभालिए गवाइए ना। आपसे ईर्खा दुर्दा आपसे नफरत छड़ के छोटिया मोटिया गल्ला छड़ के मना विच प्यार रखिए और सच जानना जिना हिरदा विच प्यार नहीं जिना दे मना विच प्यार नहीं उना दे करा विच प्यार नहीं जिन करा विच प्यार नहीं वो कार नहीं वो फिर शमशान होते हैं। क्यों कार चंगे समान ना चंगे फर्नीचर ना चंगे सख मरमर लगाने नाल घर नहीं बनता घर बनता है प्यार ना इतफाक ना घर वो है जिथे मापिया का आदर मान है घर वो है जिथे एक दूसरे की गल मनी जाती है घर वो है जिथे नाम बाणी का प्रवाह चलता है घर वो है जिथे एक दूसरे को जी कह के बुलाया जाता है घर वो है जिस घर में दान पुन होता है घर वो है जिथे भलियाई वसती है। आओ सास इन गलों अपने हिरदे में थान दईए उपदेश से अमल करिए। साहब जी कहते हैं सिखा तू एक बारी

जो शब्द सच, सच्ची वाणी और सच्चा इतिहास। शब्द ने पढ़िया ते नाल कथा तू पता भी लग गया कि मैं सच।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य बचपन दोनों दा इको गुरु दे पास गुजरिया मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया बड़े हो गए सुदामा गरीब रह गया भगवान कृष्ण महाराजे बन गए द्वारका नगरी दे मालिक बन गए ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे कि किस तरह की मित्रता सी। भाई साहब फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उनां दा बाल सखाई मित्र है ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन सुख दिंदे हन ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इस नूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है कि सदाउंदा है बाल सखाई मित्र ते फिर भी गरीब है रोज उसकी पत्नी क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नूं ब्राह्मणी कहा है कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ए सुदामा तू जगदीश नूं मिलते सही वो तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नूं दसदे होए अगे फरमान करदे हन

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नू सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उसनू होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नू देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाईसा फरमान करदे हन,

जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान कीती है। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा है, किसे मित्र नू मिलना जाए ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के, मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे। कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वदे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा लै रहे हैं, और प्रदक्षिणा लैके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पै के सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे लै रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षणा लै के पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लै के सिंघासन वल वधे।

साहेब कलगीधर पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरु दी उस्तुति कर देन पाहे गए जब ते तुमरे। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जदों तो मैं तेरे चरण फड़े हन तेरे चरणा नाल जुड़िया हां फिर मेरी निगाह तले होर कोई पीर पैगंबर औलिया नहीं आया क्योंकि कोई तेरे वर्गा होवे ते तां आवे राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान जदों तो मैं तेरे चरणा नाल जुड़िया मैं न गणेश है प्रथम मनाऊं किशन बिशन कबहू न त्याऊं कान सुने पहचान न तिन स्यों लिव लागी मोरी पगियन स्यों। हे अकाल पुरख जदों तो तेरे चरणा नाल लिव लगी है फिर मेरी नजर तले होर कोई नहीं आया कोई तेरे वर्गा होर है ही नहीं मेर करो त्रिन ते मोह जाए गरीब निवाज ना दूसर तो सो 14 लोकां विच तेरे वर्गा कोई गरीब निवाज नहीं इसलिए

तीन पैसे पल्लियों खोल के हाथ विच फड़ ले ने। जहांगीर अपने पलंग ते बैठे कोल एदी बेगम नूर जहां बैठी। तंबू च पैर पाया पर मन नूं खिच ना पई। हुण पग जहांगीर दे सिर ते भी है, कलगी भी लगी है, क्योंकि बादशाह इसने तीन पैसे बादशाह दे अगे रखे, मथा टेकिया, हाथ जोड़ के कहन लगा, सच्चे पातशाह मेरा जन्म मरण सवार दे। जहांगीर हैरान होके इस काई दा मुंह देखन लग पिया ते नाले किया, मैं ते बादशाह हां हिंदुस्तान दा, जन्म मरण मैं नहीं सवार सकदा। हां जे तू कवे हेरे जवाहरात महल माड़ियां मैं तेनू दे सकदा। उसने किया, ना हीरे जवाहरात चाहिए ना महल माड़ियां, बस जन्म मरण सवार दे। जहांगीर कहन लगा, जन्म मरण सवारना मेरे हाथ नहीं, जन्म मरण

मैनू माया नहीं चाहिदी, मैनू ते परमेश्वर दी मेर दी निगाह चाहिदी। ते वापस मुड़ पे तंबू दे बाहर आया, अचानक ख्याल आया, एक आई सिख वापस मुड़िया, जहांगीर दे कोल आया, जेड़े तीन पैसे रख के मथा टेकिया सी, वो तीन पैसे चुक के ते फिर बाहर निकल गया।

पर ओ डरदे ने जिहड़े खुशामदी ने। जहांगीर सोचदा पिए उधरों सिख दूसरे तंबू वाल तुर पे आ। गुरु हरगोबिंद साहब अपने आसन ते बैठे ने, संगता बैठिया ने ते कीर्तन हो रहे। तंबू च पैर पाया मन खिचिया गया, क्यों महापुरशां नूं मिलिए तां मन जिहड़ा है वैराग विच आ जांदा है, श्रद्धा विच आ जांदा है। किस दुनियावी आदमी

कहन की लोड ही ना पई कि जन्म मरण सवार दियो साहबां दे चरणा ते वो तीन पैसे रख के मत्था टेकिया बिना मंगया सब कुछ मिल गया हुण फैसला सुनन वालिया ने करना है कि पग कि दी उची एक पासे बादशाह है ओदे सिर ते भी पग है एक पासे गुरु है ओदे सिर ते भी पग है पर पगां विच फर्क ए एक पासे जुलम हुंदा है और एक पासे प्यार वंडिया जांदा है इस वास्ते मीर अब्दुल्ला ते नथा मल ढाडी।

गर्म कपड़ा भी कोल कोई नहीं, पर फिर भी मन ना डोल रहे है ते ना ही मन डिगा होया। क्यों के जेड़े उच्चे होंदे ने हमेशा उच्चे रहंदे ने, ओ कदी झुकदे या टुटदे नहीं।

ना घबराए, चेहरे ते दृढ़ता है, डर दा कोई नाम नाम निशान नहीं। इटा लगदियां गईयां छोटे साहबजादे दे मुंह।

बदल लो राज करोगे नहीं तो तुहानू खत्म कर दिता जाएगा। साहबजादे ने कहा साडे दादे दी पग बड़ी उची है।

मैं भी तुहाडे नाल प्यार करना, पर मैं उस बादशाह दे अगे सिर नहीं चुकाना। हार मान लवां, अपनी पग चुका दे आ, एक बादशाह दे अगे सुलाह कर लवां, यह कह के कि मैं हार गई हां, पर मैं हारिया नहीं। मेरे पुत्र शहीद हो गए, कोई सिख मेरे कोल नहीं, घोड़ा भी मेरे कोल नहीं, सवारी

कीर्तन सिखाण दी तुसी सेवा लै ली है। ये सच्चे पाशाह शुक्र है, इन्ने खुले पाठ वंडन दी तुसी सेवा लै ली है। सेवक बने प्यारे, वो कमाई संभालनी सीखनी है ते तुहानू बख्शियां कोलों ही सीखी जाएगी। असी नानक भगती करनी है, रावण भगती नहीं करनी। बाबा नंद सिंह जी ने एक करी इनान करते पे, एक सज्जन खड़ा सी कोल, उदे मन च फुरना बनया, मूह नहीं बोलिया, कहिंदा बाबा जी का रंग थोड़ा काला है। बाबा जी का रंग काल सावला सी, फुरना ही बने फुरना। बाबा जी का रंग ना गोरा नहीं है, काल सावला जा काला जा। ते बाबा जी गडवी उत्ते पांदे पांदे ना कहंदे की सोचदे मेरा रंग काला है। ते बाबा जी कहंदे पता क्यों काला है, पाप कर करके काला हो गया। देखो 12:15 दा इशनान, एक सवास बिरथा नहीं जांदा, पर मन कित्थे रखिया सेवक। गुस्सा ना करियो, सानू कोई कह दे ना तू काला है या काली है, तो मेरा ख्याल 10 श्लोक ना सुना लिए तसली नहीं होंदी। महापुरुष का जवाब देखो, महापुरुष का जवाब, पाप कर करके काला हो गया, मैं की करा। वो धारना बनाते सी ना वाहेगुरु, काली हो गई नाम तो बिना।

महबूब की मंत्री कहा कि निर्माण निर्माण निदान निदान संत श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी देकर बड़ी अकीदत के नाम में बैठी गुरु प्रसाद सिंह जी आपकी सरकार के काबिल हो जो आपकी जिंदगी के इतने अहम करे मसलों के बीचों आपकी मुस्तफा कटिया जो आपकी ने सोच लिया कर अपने दरबार में जाना है एक गल नाल आज हो गई सब कुछ दूर पैदा आगे हो गई थे सब जी ने आपको बड़े सुंदर अंदाज कुछ संगीत गलत की सचो विद्वान लोग बैठे कंकन जी रणजीत सिंह साहब जी रशिया साहब जी कान जी मेरे जी अजिंदर सीतल सिंह जी बैठे हैं सच जी जो संगीत है गाने का एक गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये कन्नड़ गल पै गई नहीं कदम इन्हें राजी हो गए इन्हें राजी नहीं बनने ये गल का मजबूत न बनता गल है आज गल है मेहनत जिन की सुपारत है जिरा मर्जी करता है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजबूत नहीं जिन्हें करना है उन साधन की रोटी नहीं मिलनी पहली गल साढ़े तेरे अखर लग गया है एक आड़ है सचिंदी पैसा भी कहा तो खाली बता रहा बिल्कुल नहीं मिलता सी इसे तंत्र जी गल तो ठीक है मैं दो गल कह के सात संगीत दुनिया के दो फान आठ हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो बेड़े काम गवा ते पेंटिंग पेंटिंग का वजूद बन गया गाने का कोई स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आद का स्वरूप है ना परमेश्वर एक अन्य बात है जब जरूर सानू समझ आ गई कीर्तन की है तो फिर सत्संग की आवाज की लड़ नहीं झगड़े की लड़ नहीं झगड़े खत्म हो जाएंगे राज 25 मिनट टाइम है राज तकरीबन 20-22 मिनट अभी समाप्ति करेंगे शब्द की ठीक है आपे खुद चेला है आपे आपे हर सब जो बनाई राग तकलीफ है यत्न करेंगे दावे नहीं कह सकते तो एक बहुत महान बात है अच्छी आते हैं कि बिल्कुल प्रतीफा है आओ आपकी मदद आज बात मैं पूछ सके मैं कब जोर नतीजे वाहे

0: खालसा जी और सब तो पहला गुरु साहबा दा बख्शा फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: समय समय दियां जालम सरकारां सिंघा सरदारां नूं खत्म करन दियां कोझियां चालां खेड़दियां रहियां हन पर सिख कौम हमेशा चढ़दी कला विच रही है। सन 1726 ईस्वी नूं जकरिया खान पंजाब दा गवर्नर बनिया। पंजाब दी बागडोर संभालदियां ही उसने पंजाब दे पहले जालम हाकमां दे पद चिन्हां ते चलदियां होइआं सिख कौम नूं अपना निशाना बना लिया। उसने सिंघां दे सिरां दे मुल रख दिते अते हुकम जारी कर दिता कि जेड़ा सिंह दी दस पावे फड़ावे जां मार के लियावे तां उस नूं शाही खजाने विचों इनाम दिता जावेगा। इस फरमान ने पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी बना दिता। कई निर्दोष सिंघां नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। इनाम ते चौधर दे पुखियां ने कई संत महात्मा सिख फड़वाए अते मरवाए। मुक्ति गल लाहौर दे सूबे विच सिंघां दा रहना मुश्किल हो गया। समय दी हालत नूं वेखदिया होया सिंघां ने जंगलां बेलियां विच लुक छिप के रहना शुरू कर दिता। जदों इन्हां जालमां नूं कोई भी सिंह नजर ना आया तां फौज ने अपने हाकमां नूं सिंघां दे खात्मे दी इतला बड़े फकर नाल हे